तमाशा बरा इश्कता जरा पिचकरे भरा उड़ोदे रंग उड़ोदे रंग उड़ोदे रंग मखमली पड़ जा आत पुलवे की रात चांदनी।

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो नगर 90.4 FM वर।
2: श्रोते हो नमस्कार, तुम्ही ऐकताय रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा। स्नेहवार्ता हा शो सुरू झालाय आणि मी आहे आर जे ऋतू तुमच्या सोबत। मंडळी, स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल अहिल्यानगरच्या वतीनं स्वर्गीय श्री सदाशिव दत्तात्रय शुक्रे यांच्या पावन स्मृतीमध्ये आयोजित अहिल्यानगर जिल्हास्तरीय हिंदी निबंध स्पर्धा 2024-27 ही आयोजित करण्यात आली होती आणि या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारोह मंगळवार दिनांक 29 सप्टेंबरला पार पडला। या पारितोषिक वितरण समारोहामध्ये जिल्हा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक विभाग अहिल्यानगरच्या माननीय संध्याजी गायकवाड तसेच विद्या प्रतिष्ठान शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय अहिल्यानगरचे प्राचार्य डॉक्टर शिवाजीराव देसाई आणि अहमदनगर जिल्हा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ अहिल्यानगरचे अध्यक्ष प्राचार्य सुनीलजी पंडित हे उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचा संपादित वृत्तांत आपण रेडिओ नगर 90.4 FM वरून ऐकत आहोत।
3: सभी को मेरा सुप्रभात। स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा हिंदी भाषा के प्रति समर्पित प्रतिभावान शिक्षक स्वर्गीय श्री सदाशिव दत्तात्रेय शुक्रे जी के पावन स्मृति में आयोजित अहिल्यानगर जिला स्तरीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2026-27 के इस पारितोषिक वितरण समारोह में मैं शबाना शेख आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का यह अवसर केवल पुरस्कार वितरण का अवसर नहीं है बल्कि यह हिंदी भाषा के प्रति हमारी निष्ठा, छात्रों की कल्पकता, प्रतिभा और शिक्षक समर्पण का उत्सव है। इस उत्सव का प्रारंभ हम विज्ञान, ज्ञान और वाणी की आदि शक्ति माँ सरस्वती के आशीर्वाद से करेंगे। सभी मान्यवरों से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे सरस्वती माँ का पूजन करें।
4: आज हमारे बीच उपस्थित है अहिल्यानगर जिला शिक्षण अधिकारी आदरणीय श्रीमती संध्या जी गायकवाड़, विद्या प्रतिष्ठान शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय के प्राचार्य एवं हिंदी विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजीराव देसाई, अहिल्यानगर जिला मुख्याध्यापक संघ के अध्यक्ष प्राचार्य सुनील जी पंडित। प्रतियोगिता और पारितोषिक वितरण समारोह को कामयाबी तक पहुँचाने में हमें सहयोग और मार्गदर्शन करने वाली हिंदी लेखिका एवं अहमदनगर कॉलेज के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर जाजी शर्मा, प्रतियोगिता में अनगिनत सहभागी निबंधों का निष्पक्ष भाव से परीक्षण करने वाली विदुषी डॉक्टर पूर्णिमा बहिरे, इस प्रतियोगिता को और आज के इस समारोह को प्रेरणा तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले स्नेहालय संस्था के शुभचिंतक आदरणीय राजेंद्र जी शुक्रे, स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल की मानक संचालिका आदरणीय कांचन जी पापेजा, स्कूल की मानक सह संचालिका आदरणीय मंदा हंडे, स्नेहालय विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री शीतल मुंडेचा, अहिल्यानगर जिला के विविध तहसील और नगर शहर के विविध विद्यालयों से आए प्रधानाचार्य, विषय मार्गदर्शक, प्रतिभावान सहभागी विद्यार्थी तथा उनके माता पिता, मैं यास्मीन सैयद, आप सभी का स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से सहज पूर्वक स्नेहपूर्वक स्वागत करती हूँ। इस समारोह के आयोजन का उद्देश्य और महत्व स्पष्ट करने से पहले मैं स्नेहालय संस्था और विद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर की धरती पर स्नेहालय एक ऐसी संस्था के रूप में कार्य कर रही है जिसकी पहचान मानवता, संवेदना, सेवा और शिक्षण के प्रति समर्पण से बनी है। सन 1989 में डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी के नेतृत्व में स्नेहालय की सेवा यात्रा प्रारंभ हुई। जरूरतमंद एवं उचित महिलाओं और बच्चों को आधार, आश्रय तथा सम्मानजनक जीवन देने से शुरू हुआ यह कार्य आज शिक्षा, सामाजिक विकास और बाल कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। स्नेहालय का मूल विश्वास है कि समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम है। इसी विचार को केंद्र में रखकर वर्ष 2010 में स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की गई। आज यह विद्यालय 588 विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन, नेतृत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक संवेदना तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कर रहा है। स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा श्री सदाशिव दत्तात्रेय शुक्ला स्मृति में हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजन का यह तीसरा वर्ष है। पिछले दो सालों में विद्यालय द्वारा अहमदनगर शहर तक सीमित अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस गतिविधि द्वारा आप लोगों से मिला प्रतिसाद एवं स्नेह को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रथम था प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्तर पर किया गया है। इस प्रकार के निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि निबंध लेखन कौशल विद्यार्थियों के विचारों को प्रकट करने का उत्तम साधन है। भाषा कोई भी हो, चाहे मातृभाषा अंग्रेजी भाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी, भाषा केवल शब्द और वाक्य नहीं होते बल्कि वह मनुष्य की भावनाएं होती है, संस्कृति की पहचान होती है। इसी इन भावनाओं को सही दिशा मिलती है विद्यालय जीवन से ही। इसी मकसद से राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान में उसे उन्नत करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान है जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि नई पीढ़ी विचारों और अभिव्यक्ति दोनों में समृद्ध है। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अहमदनगर जिला से कुल 72 स्कूलों के प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित थे। प्रतियोगिता कुल 3 समूह में ली गई। विविध भागों से तकरीबन 850 निबंध हमारे पास दर्ज हुए और उसमें से आज 21 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 850 विद्यार्थियों की यह सहभागिता इस आयोजन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लगभग सभी तहसील से, यहाँ तक कि अकोला तहसील के दुर्गम विभाग से भी हमें निबंध प्राप्त हुए हैं। 850 यह केवल एक प्रतियोगिता में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या नहीं बल्कि हिंदी भाषा से जुड़े विद्यार्थी मनों तक पहुंचने वाली एक सशक्त साहित्यिक पहल है। मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि जिन श्रद्धेय गुरु वैद्य के नाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, अर्थात पूज्य श्री सदाशिव दत्तात्रेय शुक्ले, यह स्वयं हिंदी विषय के अध्यापक रह चुके हैं। उन्हीं की याद में उनके सुपुत्र आदरणीय राजेंद्र जी शुक्ले ने अपने पिताश्री की हिंदी विषय के प्रति निष्ठा और प्रेम को जागरूक करने हेतु इस गतिविधि का आयोजन किया। एक शिक्षक की स्मृति को प्रतियोगिता के माध्यम से जीवंत रखना और सैकड़ों विद्यार्थियों को हिंदी लेखन के लिए प्रेरित करना अपने आप में एक सार्थक कार्य है। इससे हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थियों में प्रेम और सम्मान की भावना विकसित होती है। स्कूल के जिला स्तर तक का यह सफर हिंदी भाषा एवं साहित्य के संवर्धन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भविष्य में भी हिंदी से संबंधित अधिक से अधिक साहित्यिक एवं शैक्षणिक उपक्रम आयोजित करने का विद्यालय का मानस है। स्नेहालय की सेवा भावना, विद्यालय की शैक्षणिक दृष्टि और हिंदी के प्रति समर्पण, इन तीनों का सुंदर संगम इस जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में दिखाई दिया है। यह पहल निश्चित रूप से हिंदी पढ़ो, हिंदी लिखो और हिंदी में बात करो के संदेश को विद्यार्थियों से समाज तक पहुंचाने की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम है। यह आपका हिंदी भाषा के प्रति सम्मान है, स्नेहालय के प्रति प्रेम है कि इस कारण आप लोग हमसे जुड़े हैं और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
5: धन्यवाद मैडम जी। कुछ व्यक्तित्व समय के साथ विदा हो जाते हैं पर उनके विचार समय से भी आगे चलते हैं। स्वर्गीय श्री सदाशिव दत्तात्रेय शुक्ले जी ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व थे जिनकी हिंदी भाषा के प्रति निष्ठा और समर्पण आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
4: नेतृत्व वह नहीं जो केवल दिशा दिखाए बल्कि नेतृत्व वह है जो दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हमारे विद्यालय के लिए आज ये बड़े सम्मान की बात है कि हमारे बीच उपस्थित है अहमदनगर जिला शिक्षण अधिकारी आदरणीय श्रीमती संध्या जी गायकवाड़। उनके गरिमामयी व्यक्तित्व एवं कार्य परिचय से सभी को परिचित कराने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ विद्यालय की मानद संचालिका श्रीमती कांचन पापड़ेजा जी को। परिचय मान पत्र के वाचन द्वारा होगा।
6: सभी को सुप्रभात। आज मुझे ये मान पत्र पढ़ने का जो मौका मिला बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि संध्या जी गायकवाड़ जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं माध्यमिक विभाग अहमदनगर, आदरणीय संध्या जी, ज्ञान के दीप से शिक्षा जगत को आलोकित करने वाली शैक्षणिक गुणवत्ता के प्रति समर्पित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए सतत प्रयत्नशील तथा शिक्षकों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करने वाली आपकी कर्मनिष्ठ एवं संवेदनशील सेवाएं निश्चय ही अनुकरणीय हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की शिक्षाधिकारी के रूप में आपका दायित्वपूर्ण नेतृत्व, शैक्षणिक उपक्रमों के प्रति आपकी सकारात्मक दृष्टि तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आपका सतत मार्गदर्शन अहिल्यानगर जिले के शिक्षा जगत के लिए प्रेरणा स्रोत है। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना दिल्ली द्वारा आपको प्रदान किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार अर्थात आपकी उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवाओं, समर्पण, नेतृत्व क्षमता और शिक्षा के इस क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान का राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त गौरवपूर्ण सम्मान है। यह उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि समस्त अहिल्यानगर के लिए, अहिल्यानगर के शिक्षा जगत के लिए भी अत्यंत गर्व और प्रेरणा का विषय है। स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल अहिल्यानगर द्वारा हिंदी भाषा के प्रति समर्पित प्रतिभावान शिक्षक स्वर्गीय श्री सदाशिव दत्तात्रेय शुक्रे जी की पावन स्मृति में आयोजित अहिल्यानगर जिला स्तरीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2026 के पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता स्वीकार कर आपने इस आयोजन की गरिमा में विशेष अभिवृद्धि की है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, विद्यार्थियों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति और लेखन प्रतिभा इस आयोजन की गरिमा में विशेष अभिवृद्धि की है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति और लेखन प्रतिमा को प्रोत्साहन देने वाले इस प्रयास को आपकी गरिमामय उपस्थिति से प्राप्त हुआ सम्मान हम सभी के लिए प्रेरणादायी एवं अविस्मरणीय है। आपके मार्गदर्शन से शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार सृजन और उज्जवल भविष्य की दिशा बनती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन सदैव स्वस्थ, सुखमय एवं यशस्वी रहे तथा शिक्षा जगत में आपका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।
7: मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से अनुरोध करती हूँ कि वे आदरणीय संजय जी गायकवाड़ को शॉल, मानपत्र, पुस्तक, स्नेहालय का प्रतीक चिन्ह और विशेष रूप से हमारे बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हुए पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें।
8: ज्ञान जब अनुभव से मिलता है तो व्यक्तित्व में गहराई आती है और जब अनुभव समाज के काम आता है तो वो प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे ही प्रेरक प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित है डॉक्टर शिवाजी राव देसाई जी। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय प्राचार्या श्रीमती शीतल गुंदेजा मैडम को कि वह डॉक्टर शिवाजीराव देसाई जी का परिचय मानपत्र के वाचन द्वारा करें।
9: ज्ञान, कर्म और संवेदना के दीप स्तंभ को समर्पित डॉक्टर शिवाजी बालको देसाई जी, प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय केड़गांव अहिल्यानगर। आदरणीय शिवाजी देसाई सर, सादर प्रणाम। आज 29 सितंबर 2026 को स्नेहालय के प्रांगण में स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल अहिल्यानगर द्वारा हिंदी भाषा के प्रति समर्पित प्रतिभावान शिक्षक स्वर्गीय श्री सदाशिव दत्तात्रेय शुक्रे जी इनकी पावन स्मृति में आयोजित अहिल्यानगर जिला स्तरीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2026-27 के पारितोषिक वितरण समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में आपको पाकर अत्यंत हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 28 वर्षों की दीर्घ एवं समर्पित सेवा के माध्यम से शिक्षक, प्राध्यापक एवं प्राचार्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने बीएड महाविद्यालयों के अध्यापन एवं प्रशासनिक दायित्व के साथ साथ शोध कार्य, शिक्षक प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आप शिक्षा शास्त्र में पीएचडी हैं तथा शोध मार्गदर्शक, शोध प्रबंधक परीक्षक, पाठ्यक्रम निर्माण समिति के सदस्य, बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य एवं एनएएसी नैक पीयर टीम सदस्य के रूप में शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आप अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं तथा आपने पुस्तकों एवं संपादित पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान विस्तार में योगदान दिया है। आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको महात्मा ज्योतिराव फुले गुणवंत शिक्षक पुरस्कार, महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षण गौरव पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न गौरव पुरस्कार, बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड तथा इनोवेटिव टीचर अवार्ड जैसे अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। शिक्षक के साथ साथ सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी आपका योगदान प्रशंसनीय है। वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, बाढ़ राहत कार्य एवं सामाजिक सहायता जैसे विविध उपक्रमों में आपकी सक्रिय सहभागिता समाज के प्रति आपके संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व को प्रतिबिंबित करती है। आपकी यह सामाजिक सहृदयता ही है कि आप अपने शैक्षणिक कार्य हेतु अहिल्या नगर से जुड़े हैं, लेकिन साथ ही आज के इस पावन अवसर पर स्नेहालय से भी जुड़े हैं। स्नेहालय परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। स्नेहालय परिवार
10: धन्यवाद। मैडम, मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से अनुरोध करती हूँ कि वे शिवाजी देसाई जी को शाल, मानपत्र, पुस्तक, स्नेहालय का प्रतीक चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें।
7: अब हम अगले प्रमुख अतिथि की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच उपस्थित है अहिल्या नगर जिला मुख्याध्यापक संघ के अध्यक्ष श्री सुनील जी पंडित। आपके परिचय के लिए मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कांचन पापेजा जी को कि वे प्राचार्य श्री सुनील पंडित जी का परिचय मानपत्र के वाचन द्वारा करें।
11: और एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो मानपत्र पढ़ने का, वो है शिक्षा कर्मयोगी प्राचार्य श्री सुनील पंडित जी। आदरणीय सुनील जी, सादर प्रणाम। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार सृजन और राष्ट्र निर्माण की पवित्र साधना है। इस साधना को आपने जीवन का ध्येय बनाकर आपने शिक्षा जगत में उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायी योगदान दिया है। एक समर्पित शिक्षक एवं कुशल प्रशासक के रूप में आपने अनेक विद्यार्थियों के जीवन को ज्ञान, अनुशासन और संस्कारों से समृद्ध किया है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाला मुख्याध्यापक संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तथा अहिल्या नगर जिला माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाला मुख्याध्यापक संघ में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों को निष्ठा से निभाते हुए आपने शिक्षा जगत के हित में निरंतर कार्य किया है। ज्ञान कलश मासिक के संपादक के रूप में ज्ञान एवं साहित्य के प्रसार के प्रसार में भी आपका योगदान सराहनीय है। आपकी निष्ठा, कर्मठता और शैक्षणिक सेवाओं की उत्कृष्टता का सम्मान राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार के रूप में होना निश्चित ही शिक्षा जगत के लिए गौरव का विषय है। आपका व्यक्तित्व विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज स्नेहालय के प्रांगण में स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा हिंदी भाषा के प्रति समर्पित प्रतिभावान शिक्षक स्वर्गीय श्री सदाशिव दत्तात्रेय शुक्रे जी, इनकी पावन स्मृति में आयोजित अहिल्या नगर जिला स्तरीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2026 के पारितोषिक वितरण समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत सम्मान एवं हर्ष का विषय है। हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थियों में प्रेम, अभिरुचि एवं सृजनात्मकता जागृत करने के इस प्रयास में आपका मार्गदर्शन निश्चित ही नई प्रेरणा प्रदान करेगा। स्नेहालय के प्रति आपका प्रेम एवं सहयोग ऐसे ही बना रहे। आपके स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन के लिए स्नेहालय परिवार की ओर से अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
7: मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से अनुरोध करती हूं कि वे सुनील पंडित जी का कोशाल, मानपत्र, पुस्तक, स्नेहालय का प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। किसी भी प्रतियोगिता की निष्पक्षता और गुणवत्ता के पीछे परीक्षकों की सूक्ष्म दृष्टि, अनुभव और निष्पक्षता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रतियोगिता के यशस्वी कार्य में मौलिक योगदान देने वाली डॉक्टर ऋचा जी शर्मा का परिचय यहाँ पर हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर ऋचा शर्मा, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिंदी विभाग अहमद नगर कॉलेज अहिल्या नगर। आदरणीय ऋचा जी, सादर प्रणाम। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी तथा संस्कृत भाषा में MA और PhD पदवी प्राप्त कर प्रयागराज की धार्मिक पावन भूमि से अहिल्या नगर जैसी ऐतिहासिक भूमि पर कदम रखकर केवल ज्ञान दान का कार्य ही नहीं किया तो अपनी प्रतिभा को पल्लवित करते हुए मौलिक साहित्य की अमूल्य धरोहर पर भी सृजित की है। अब आ लौट चले ये लघु कथा संग्रह और गुलदस्तों की संस्कृति द्रौपदी क्यों बटी तुम जैसी आपकी कृतियाँ जगत की अनमोल निधि है। साथ ही आप एक उत्कृष्ट समीक्षक के रूप में भी हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान करती रही है। आपके बहुआयामी किरदार ने आपको विविध राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मानों से विभूषित किया है जिसमें बोल्ड अवार्ड साहित्य महापद्य विदा पुरस्कार आदर्श शिक्षक पुरस्कार साहित्य यात्री सम्मान धर्मवीर भारती पुरस्कार विक्रम सोनी पुरस्कार आदि आपकी विद्वत्ता और साहित्य सेवा का प्रमाण है। आज हम भाग्यशाली है कि आप जैसे साहित्यिका ने स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित स्वर्गीय श्री सदाशिव दत्तात्रेय शुक्रे स्मृति जिला स्तरीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता में सम्मिलित छात्रों की निबंधों का मूल्यांकन कर उनकी लेखन शैली को उनमें छिपी प्रतिभा को योग्य दिशा देने का कार्य किया है। आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से यह प्रतियोगिता और भी सार्थक होती है। स्नेहालय परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। शुभेच्छुक स्नेहालय परिवार। उसी के साथ में यहाँ पर हमारी दूसरी परीक्षक है आदरणीय पूर्णिमा बेहरे मैम, इनका भी परिचय करना चाहती हूँ। हिंदी की सेवा में समर्पित एक अनुवाद साधिका डॉक्टर पूर्णिमा बेहरे मेघना अभिजीत करंदीकर अनुवाद कोर्स असमन्वयक अहमदनगर महाविद्यालय अहिल्यानगर। आदरणीय पूर्णिमा जी सादर प्रणाम। आपने स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल अहिल्यानगर द्वारा हिंदी भाषा के प्रति समर्पित प्रतिभावान शिक्षक स्वर्गीय श्री सदाशिव दत्तात्रेय शुक्रे जी की पावन स्मृति में आयोजित अहिल्यानगर जिला स्तरीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2026-27 में परीक्षक के रूप में अपनी विद्वत्ता और निष्पक्ष दृष्टिकोण द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया है। हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति आपकी अटूट निष्ठा, अनुवाद के क्षेत्र में आपकी बहुआयामी प्रतिभा तथा शिक्षा के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान अत्यंत प्रशंसनीय एवं प्रेरणादायी है। हिंदी में MA, MPhil एवं PhD जैसी उच्च शैक्षणिक उपाधियों से अलंकृत आपका व्यक्तित्व विद्वत्ता भाषिक दक्षता और साहित्यिक संवेदनशीलता का सुंदर संगम है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से अनुवाद अध्ययन में प्राप्त PG डिप्लोमा ने आपके अनुवाद कौशल को और समृद्ध किया है। अहमदनगर महाविद्यालय में हिंदी की सहायक प्रोफेसर के रूप में आपकी शैक्षणिक सेवाएं तथा अनुवाद एवं भाषा विशेषज्ञ के रूप में आपका अनुभव हिंदी भाषा के संवर्धन में आपके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। स्नेहालय परिवार आपकी विद्वत्ता और योगदान करते से अभिनंदन करते हुए आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए मंगलमय कामना करता है। शुभ चिंतक स्नेहालय परिवार। यहाँ पर आदरणीय रुचा शर्मा मैडम और पूर्णिमा बेहरे मैडम, इनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मैं सभी मान्यवरों से सादर अनुरोध करती हूँ कि वो प्रथम शर्मा मैडम का सम्मान करें। सम्मान होने जा रहा है आदरणीय राजेंद्र शुक्रे जी, जो MITC में स्थित प्रिसिजन इंजीनियरिंग वर्क्स के ओनर है। इन्होंने इस प्रतियोगिता के रूप में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। स्नेहालय के बच्चों के प्रति हमेशा स्नेह की भावना रखने वाले शुक्रे जी का यहाँ सम्मान होने जा रहा है। मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से अनुरोध करती हूँ कि वे सर का यथोचित सम्मान करें। उसके बाद शिक्षक एवं पालक संगठन के ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय मंजू सहानी जी का भी यहाँ पर सम्मान होगा। मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से निवेदन करती हूँ कि वे सहानी जी का भी यहाँ पर सम्मान करें। अब यहाँ पर हमारा मुख्य आज का आकर्षण है पारितोषिक वितरण समारोह, वो आरंभ होने जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना है कि विजेता छात्र के साथ उनके मार्गदर्शक शिक्षक भी मंच पर आए और अपने विद्यालय के अन्य सहभागी के प्रमाण पत्र स्वीकार करें और मंच के नीचे हमारे प्रतिनिधि के पास हस्ताक्षर करें। उसी प्रकार जिन विजेताओं को चेक राशि प्राप्त हो रही है उन्होंने भी हस्ताक्षर करना है। आपके सहयोग से हमारा कार्य निश्चित ही सुनियोजित होगा। मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ सर्वप्रथम उत्तेजनापूर्ण समूह क से उत्तेजनापूर्ण तृतीय क्रमांक वैष्णवी रविंद्र शेवाड़े कक्षा 6 न्यू आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल वड़गांव कुत्ता। हर्षवर्धन अनिल घारे कक्षा 6 आत्मा मलिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक गुरुकुल स्पेशल सैनी विभाग कोकम थान तहसील कोपरगांव उनके साथ आए उनके माता पिता को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। उत्तेजनापूर्ण पहला क्रमांक जाता है अदिति अमोल लोखंडे कक्षा पांचवी पद्मश्री डॉक्टर विठलराव एकनाथ विखे पाटिल माध्यमिक विद्यालय बाबाईश्वर तालुका राहता। चतुर्थ क्रमांक जाता है सिद्धि राजेश देवकर छठी कक्षा रेसिडेंशियल हाईस्कूल अहिल्यानगर। तृतीय क्रमांक अनुजा अविनाश भसा कक्षा पांचवी अशोक भाऊ फिरोजिया इंग्लिश मीडियम स्कूल अहिल्यानगर। द्वितीय क्रमांक ईश्वरी लक्ष्मण शेलार कक्षा छठी जिला परिषद प्राथमिक शाळा शिंगवे केशव तहसील पाथर्डी। प्रथम क्रमांक की हकदार है धनश्री दीपक पेटकर कक्षा छठी स्वानंद विद्यालय चिंचोली खाड़दार तालुका करजत। यहाँ पर का पारितोषिक वितरण संपन्न हो चुका है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। आपकी सफलता आपके परिश्रम के साथ साथ आपके मार्गदर्शक शिक्षकों और अभिभावकों के प्रोत्साहन का भी परिणाम है। अब हम उस व्यक्तित्व के मार्गदर्शक विचार सुनने जा रहे हैं जिनकी अध्यक्षता हम समारोह को की गरिमा को प्रदान कर रही है। हम सादर निमंत्रित करते हैं माननीय श्रीमती संध्या जी गायकवाड़ जी को, वे अपने मार्गदर्शक विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें।
12: नमस्कार सर, श्रेहाल इंग्लिश मीडियम स्कूल अहिल्यानगर द्वारा हिंदी भाषा के प्रति समर्पित प्रतिभावान शिक्षक आयोजित ये जो निबंध प्रतियोगिता है, मैं व्यासपीठ के सभी सम्मानित प्रभार स्कूल की प्रिंसिपल उनका सभी स्टाफ और सामने बैठे मेरे विद्यार्थी मित्र मैत्र, आज जो आपने प्राइज मिला है और बैठे हुए लोग ये चाहते होंगे कि हमें भी प्राइज मिले। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो शुक्रिया सर ने बताया, आज हम जो भी सीखते हैं जो भी हमारे जीवन में मिले उसका उपयोग हम हमारे लिए और समाज के लिए क्या करते हैं इसका महत्व सभी को पता है। आज के दिन इतना ही बताऊंगी, जब भी जो भी भाषा हम समझते हैं जो भी भाषा हम बोलते हैं या जिस भाषा में हम सीखते हैं चाहे लैंग्वेज किसी भी प्रकार की हो हमें 100% देना चाहिए। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसका यूज़ क्या है, कहाँ पे करना है, परीक्षा में हम जब लिखते हैं तो मार्क्स मिलने के लिए लिखते हैं, लेकिन जीवन में हम सीखते हैं तो हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है इसके लिए सीखते हैं। आज जे भी इधर पेरेंट्स उपस्थित है त्या सगळ्यांना असं विद्यार्थ्यांबद्दल आपल्याला स्वाभिमान वाटतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता जी प्रतियोगिता झाली तशा अनेक प्रतियोगिता आपल्या आयुष्यामध्ये येत असतात, आपले शिक्षक त्यासाठी मार्गदर्शन करत असतात, समाज आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे शिकवत असतो, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण जे वाचन करतो आयुष्यामध्ये जे काही पाहतो आजूबाजूला चाललेल्या ज्या गोष्टी निरीक्षणाने शिकतो आपला अभ्यासक्रम काय सांगतो हे यामध्ये सांगितलं आहे। मॅडमनी मगाशी विचारलं की एन ई पी आपल्याकडे झाला का सुरू, तर एन ई पी 2020 आपण शिक्षणाची जी बाजू शिकतोय ती आपल्या आयुष्यात खूप महत्त्वाची आहे। जीवन आणि शिक्षण याचा मेळ साधणे हे एक आपलं उद्दिष्ट आहे आणि त्या मेळ साधण्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांग परिपूर्ण विकास होणं, मग काही विद्यार्थी खूप चांगले लेखनामध्ये असतील काही बोलण्यामध्ये असतील, त्यातला हा प्रकार की तुम्ही आता ही प्रतियोगिता ठेवली हिंदी विषयामध्ये तुम्ही किती छान बोलू लिहू शकताय किंवा जे विषय दिलेत त्या विषयामध्ये तुमचं किती वाचन आहे त्या वाचनावर अवलंबून तुम्ही लेखन करू शकता। मी तर म्हणेन की तुमचं इतकं वाचन प्रगल्भ असावं की आपण जेव्हा काही स्पर्धा घेतो कुठल्याही विषयावर तर त्या विषयाच्या अनुषंगाने आपण जे ज्ञान मिळवले ते आपल्याला वहीमध्ये पुस्तकामध्ये उतरवता यावं। त्यासाठी एक चांगली गोष्ट आपले अनेक उपक्रम असतात पण आपली जी दैनंदिनी असते लहान वयापासून आपण जर डायरी लिहायला सुरुवात केली तर आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे त्या डायरीचा उपयोग होऊ शकतो। असे अनेक उपक्रम आपण शाळांमध्ये आपल्या व्यक्तिगत रूपामध्ये सुद्धा करू शकतो। तर अशा सर्व सर्वांगपूर्ण शिक्षणासाठी या जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धेमध्ये जे यशस्वी झालेत विद्यार्थी त्यांच्यासाठी आणि जे इथे स्नेहालयमध्ये शिकतात त्या सर्व विद्यार्थी त्यांचे शिक्षक त्यांना मी खूप खूप शैक्षणिक शुभेच्छा देते। माझी सगळ्या शिक्षकांना मुख्याध्यापक आणि या स्नेहालय संस्थेला अशी विनंती राहील की माझ्या शाळेतील एकही विद्यार्थी असा राहणार नाही की तो किमान अध्ययन क्षमता पूर्ण न करता पुढे जाईल. सर्वच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे शिकावं, मोठं व्हावं, आयुष्यात माणूस म्हणून जगण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते आपल्या शाळेमध्ये आणि संस्थेमध्ये मिळावं आणि त्यातून चांगला माणूस घडावा. माझा विद्यार्थी स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी तो तयार व्हावा. सर्व भाषांमधून त्याला ज्ञान मिळण्यासाठी तो तयार व्हावा. शिक्षक हा मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जेव्हा जेव्हा असतो तेव्हा तेव्हा विद्यार्थी खूप चांगल्या प्रकारे घडतो. आपण त्याला पुश करण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे त्या सगळ्या गोष्टी शिक्षणामधून देणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून आपण या संस्कृती जे जे तुमच्यावर मूल्य संस्कार होतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शाळेतून जो वसा घेता त्या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला शुभेच्छा देते. आज या ठिकाणी मला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित राहण्याची आयोजकांनी संधी दिली त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करते आणि पुनश्च आपले सर्वांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला शुभेच्छा देऊन थांबते. धन्यवाद.
13: धन्यवाद मॅडम. आपने जीवन और शिक्षण का साधन में कैसा हो इस विषय में बहुत अच्छा ही मार्गदर्शन बच्चों को किया है, शिक्षकों को किया है. आपका मार्गदर्शन हमें ऐसा ही मिलते रहे और आपका स्नेह स्नेहालय से जुड़ा रहे यही कामना करते हैं. आज संध्या जी मैडम बहुत व्यस्त ऐसे समय साधने में से वो समय निकालकर हमारे लिए आए हैं, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है. वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते इसलिए हम उनके जाने के बाद में भी प्रोग्राम जारी रखेंगे.
14: सफलता का आनंद तभी सार्थक होता है जब उसके पीछे परिश्रम की कहानी होती है. अब हम आगे बढ़ते हैं समूह ख के पारितोषिक वितरण की ओर. उत्तेजना पूर्ण तृतीय क्रमांक वैभवी योगेश मोंडलकर कक्षा आठवीं समर्थ विद्या मंदिर प्रशाला सावेडी. उत्तेजना पूर्ण तृतीय क्रमांक है श्रेयस प्रतीक वाघ कक्षा सातवी रेसिडेंशियल हाईस्कूल अहिल्यानगर. उत्तेजना पूर्ण प्रथम क्रमांक जागृती भगवान केळकर कक्षा सातवी महाराणी ताराबाई कन्या विद्यालय केडगाव. चतुर्थ क्रमांक उत्कर्षा नितीन कांबळे कक्षा सातवी सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय कृषी विद्यापीठ रापुरी. तृतीय क्रमांक सृष्टी अर्जुन पादीर कक्षा सातवी हनुमान विद्यालय टाकळी खातगाव. तृतीय क्रमांक जीविका प्रशांत भवर कक्षा आठवी भाऊसाहेब फिरोदिया हायस्कूल. और ग्रुप ख से प्रथम क्रमांक जाता है सिद्धि ज्ञानेश देव कक्षा आठवी अशोक फिरोदिया हायस्कूल.
13: मैं मान्यवरों से विनंती करती हूँ कि वो स्थानापन्न हो कुर्सी पर बैठ जाए. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लेखन के पीछे एक शिक्षक का मार्गदर्शन और एक परीक्षक की सूक्ष्म दृष्टि होती है. अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर पूर्णिमा बेहरे जी को कि वे इस प्रतियोगिता को लेकर अपने अनुभव वर्णन करें.
15: माननीय मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों,
13: आपने आपके लिए जो निबंध के विषय रखे गए थे उस संदर्भ में जिनको भी पुरस्कार मिला है वो तो अभिनंदन के पात्र है ही, पर जिनको नहीं भी मिला है ये वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा था. परीक्षण करने के लिए बहुत ही मुश्किल बात थी कि किसका चुना जाए, किस विषय का. जिन्होंने भी जो भी लिखा था वो परीक्षण करना मतलब उसमें से अच्छा चुनना ये बहुत ही मुश्किल काम था. तो जिन्होंने जिनको पारितोषिक नहीं भी मिला है उनका भी अभिनंदन और एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए. जो भी विषय आपको निबंध के लिए दिए गए थे वो एक्चुअली निबंध के विषय नहीं बल्कि आपके जीवन से जुड़े हुए विषय थे. जैसे कि एक बूंद का जो महत्व होता है, पानी का एक बूंद, अगर आप पानी के एक बूंद होते तो क्या सोचते, इस तरीके से आपको सोचना था और लिखना था. तो जब तक पानी का महत्व आप लोगों को पता नहीं होगा तब तक आप उस तरीके से सोच नहीं पाते जिस तरीके से आपने सोचकर लिखा है. और आशा करती हूँ कि आपने जो भी लिखा है उस निबंध में उसको जीते होंगे. पानी के एक एक बूंद के महत्व को समझ कर आप अपने जीवन को व्यतीत करते होंगे. और दूसरा जो विषय था कि अगर मैं वैज्ञानिक होता तो उस पर भी बच्चों ने बहुत अच्छे विचार किए हैं. जैसे खारे पानी को मीठा करके अगर मैं वैज्ञानिक होता तो खारे पानी को मीठा कर देता, या फिर कुछ ऐसी बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाइयां का खोज करता। तो ऐसे जो विषय है जो मन को उनको छूने वाले हैं, या फिर उन्होंने कुछ भी अनुभव, जो भी अनुभव किया होगा अपने घर के आसपास हो या घर में हो, कि हम लोग तो एक दूसरे को देख रहे थे। और मुझे एक बात बतानी है, श्रेयस वाघ का तो मैं बहुत मतलब याद रहा उसका नाम भी, कि इतना जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंसिल रख के लिखा होगा उसमें, इतना सुंदर अक्षर सभी का था, सृष्टि का भी सुंदर था। प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने निबंध का इतना अच्छा किया था कि देखकर मैंने अपने घर में जब दिखाया सबको, तो मेरे ससुर जी का यह मानना था, उन्होंने कहा कि इतना सुंदर आपके निबंधों से सभी ने प्रेरणा ली है, तो आप सभी का अभिनंदन। और इसी बात मैं स्नेहालय का भी बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने ऐसा एक आयोजन किया जिससे बहुत सारे स्कूलों से आप लोग जुड़ पाए और हम लोगों को भी ये मौका दिया जिससे परीक्षण करके ये कार्यक्रम में हम आ पाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों का धन्यवाद।
7: तो बच्चों अब सस्पेंस और नहीं, अब बारी है हमारे तीसरे ग्रुप के सुपरस्टार विजेताओं की, जहाँ लगन होती है सफलता अपना रास्ता स्वच्छ बना लेती है। अब सब है समूह घर के पारितोषिक वितरण का। पठान दसवीं प्रगत माध्यमिक विद्यालय अहिल्या नगर उत्तेजना पूर्ण द्वितीय क्रमांक साईली संदीप जाटके कक्षा दसवीं रेसिडेंशियल हाईस्कूल अहिल्या नगर पारितोषिक का उत्तेजना पूर्ण प्रथम क्रमांक पूर्वा बाळा साहेब वायर कक्षा नवी भारत विद्यालय मिरजगाव। चतुर्थ क्रमांक है तनिष्का राजू केरोकर कक्षा नवी यशवंत माध्यमिक विद्यालय मुकुंद नगर। तृतीय क्रमांक है अभिलाषा कृष्णा मिश्रा कक्षा नवी स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल। द्वितीय क्रमांक है शुभंकर सागर मालवदे कक्षा नवी समर्थ विद्या मंदिर प्रशादा सावेडी। आपका अधिक समय न लेते हुए प्रथम विजेता का नाम घोषित करने जा रही हूँ और वो है अशोक भाऊ फिरोदिया इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा नवी की विद्यार्थिनी आर्या सूरज यादव।
16: अच्छा लेखन केवल शब्दों का संयोजन नहीं बल्कि विचारों की प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की कला है। इस कला को समझने और निखारने के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रुचा शर्मा जी को, कृपया अपने मार्गदर्शक विचारों से विद्यार्थियों को लाभान्वित करें।
17: सम्माननीय मंच, मंच पर उपस्थित विद्वजन, आप सभी विद्यार्थी, स्नेहालय तथा स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल के सभी प्राध्यापक और अभिभावकगण, आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदी दिवस के अवसर पर हो रहा है और हम सब शिक्षक इस दृष्टि से विचार करते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाए कि जिससे विद्यार्थी जो है वो हिंदी में अधिक से अधिक रुचि लें, हिंदी में सोचें, लिखें, विचार करें, ये हम लोगों की दृष्टि रहती है। प्रतियोगिता के संदर्भ में कुछ बातें डॉक्टर पूर्णिमा मैडम ने बताई आपको। मेरे पास दूसरा समूह आया था, उसमें अलग विषय थे, जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य, देश के विकास में युवाओं का योगदान, हमारी संस्कृति, इस तरीके के विषय थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य, इसमें कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता, किसी ने लिखा कि वो देश का अच्छा नागरिक बनना चाहे। तो वास्तव में हर शिक्षक की इच्छा यही होती है कि हमारा विद्यार्थी जो है वो एक अच्छा इंसान बने, और मेरा ये मानना है कि जो अच्छा इंसान होता है वो अपने आप ही बाकी सारे काम वो बहुत अच्छे तरीके से करता है और जीवन में हमेशा वो सफल होता। निबंध बहुत अच्छे लिखे गए थे और जैसा मैडम ने बताया कि अक्षर बहुत स्पष्ट थे, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया था, लेकिन कुछ बातें मैं और कहना चाहती हूँ कि आगे जब प्रतियोगिता हो और आपके पास इसकी सूचना आए तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, माता पिता भी उनको भी ये ध्यान देना जरूरी है कि जिस विषय पे बच्चा लिख रहा है, जिस विषय का उसने चुनाव किया है, तो उसके लिए उसने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं क्या? ये विचार उसे कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गूगल से ही वो देख रहा है, क्योंकि अनेक विद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ पर हैं। हर विद्यालय में ग्रंथालय होता है, आप वहाँ से पुस्तकें लीजिए और उन पुस्तकों में से पढ़िए। और 11वीं 12वीं विशेष रूप से 11वीं 12वीं के लिए अगली बार हम लोग ही कोशिश करेंगे कि आप पुस्तकों के संदर्भ भी दें। आप ये लिखें कि हाँ किस पुस्तक से आपने पढ़ा है, लिखेंगे तो आप अपनी भाषा। दूसरी बात ये कि निश्चित रूप से इस निबंध के चयन में, लिखने में आपके माता पिता ने आपका मार्गदर्शन किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा, मैं ये मान के चलती। लेकिन उसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य, तो अगर आपने लिखा है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो आपको ये ध्यान रखना कि आपने ये बात लिखी है, तो उसे अपने विचारों में, अपने व्यवहार में उतारना है। पहले एक विषय होता था, हम लोग जब छोटे थे तो मॉरल साइंस विषय होता था, जिसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। अभी मुझे नहीं मालूम कि विद्यालय स्तर पर वो विषय है या नहीं है, लेकिन हम सब को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम ये सोचें कि, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये बात है कि हम लोग ये सोचें कि हम रोज जो हम काम कर रहे हैं उसमें कोई काम है हम ऐसा कर रहे हैं क्या कि जो अच्छा कर रहे हैं, जिससे मन संतुष्ट हो रहा है। वो काम बड़ा छोटा सा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। जैसे आपके बाबा दादी घर में हैं ना, उनको कुछ मदद चाहिए, उनको पानी चाहिए, आपने पानी दिया, उनको कुछ उठने में मदद चाहिए, आपने उनको सहारा दिया, आपके यहाँ पेड़ पौधे हैं उनका आपने ध्यान रखा, तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को बहुत बड़ा बनाती। तो ज़रूरत है कि हम इन सारी चीज़ों पर सोचें। और ये एक, मैं ये मान के चलती हूँ कि ये प्रतियोगिता एक टीम वर्क है, जिसमें यास्मिन मैडम तथा अन्य शिक्षक, प्राचार्य महोदय, आदरणीय राजेंद्र शुक्रे जी, विद्यार्थी, उनके अभिभावक और हम परीक्षक, हम सब ने टीम वर्क की तरह काम किया। तो हमें सोचना भी उसी तरह से है और हमें आगे जो प्रतियोगिता अगले वर्ष आयोजित होगी उन पर काम भी उसी तरह से टीम वर्क की तरह करना है, जिससे हम जो संस्कार विद्यार्थियों को देना चाहते हैं वो संस्कार जो है वो विद्यार्थियों को दे सकें और हमारी बात उन तक पहुंचे। ऋग्वेद में एक पंक्ति आती है, एक ऋचा है, उसको ऋचा कहते हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र है उसको ऋचा कहते हैं। तो वो पंक्ति है कि आ नो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः। इसका अर्थ हिंदी में ये है कि हम सबके पास सब तरफ से कल्याणकारी विचार आए, हमारे पास आते रहे। विचार हमारे पास आते हैं, हमें उन विचारों को स्वीकार करना है, अच्छे विचारों हमें ग्रहण करना है। एक उदाहरण के लिए बात आपको और बोल रहे हो, AI आप सबने सुना है, जिसे हिंदी में हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। हम सबके पास बुद्धि है, तो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जरूरत से ज्यादा उपयोग क्यों करें? हम उसका उतना ही इस्तेमाल करें कि जहाँ पे जरूरत है, बाकी स्थानों पर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, जिससे धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती चली जाती है। और जितना हम AI का इस्तेमाल करेंगे उससे उतनी हमारी समझ, हमारी भाषा, उस पर हमारा अधिकार जो है वो कम होता चला जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि किताबें अधिक पढ़नी है, AI का इस्तेमाल कम से कम करना है, और आपके शिक्षक जो आपसे बात कहते हैं उन बातों को मानकर आगे चलते जाना। एक कविता है विद्यार्थियों के लिए उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि जो आपके आसपास जो शिक्षक होते हैं वो क्या चाहते। तो उसके कुछ शब्द अगर कठिन होंगे तो मैं सरल करके बता दूंगी आपको। डॉक्टर जयकुमार जलज की कविता है, प्यार लो विद्यार्थियों मेरे तुम्हारी शक्ति मुझ में बोलती, प्यार लो विद्यार्थियों मेरे तुम्हारी शक्ति मुझ में बोलती है, थके मन मस्तिष्क में अमृत सा घोलती है। मैं बहुत मजबूत रखूंगा स्वयं के ज्ञान के कंधे, मतलब एक शिक्षक कह रहा है कि आपको जो भी ज्ञान चाहिए वो मैं दूंगा। मैं बहुत मजबूत रखूंगा स्वयं के ज्ञान के कंधे कि उस पे बैठ कर तुम देख पाओ दूर तक। आओ देखो कि यह जो कीचड़ यहाँ पर जम गया है, कीचड़ मतलब है कि जो समाज में अगर आपको कुछ गलत चीजें दिखाई दे रही हैं, गंदगी दिखाई दे रही, आओ देखो कि यह जो कीचड़ यहाँ पर जम गया है, मैं यहाँ पाषाण बन उभरूं। पाषाण माने पत्थर, जैसे कहीं पर पानी भर जाता है तो बीच बीच में हम लोग पत्थर डालते हैं और उस पे पैर रखकर निकल जाते हैं। तो शिक्षक ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर पाषाण बन उभरूं, तुम उस पर पैर रखकर सुरक्षित निकल जाना। तो ये हमेशा जो एक शिक्षक है उसके

0: सभी विजेता विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हमने जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन कर कामयाबी के एक मंजिल को छुआ है। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। पारितोषिक को नंबरों की गिनती में आंकना यह कोई कामयाबी का पैमाना नहीं है। अपनी कोशिश के तहत छोटा सा सम्मान पाना भी अपने आप में बड़ी कामयाबी होती है। हौसला बढ़ाने के लिए दिशा दर्शक साबित होती है। अब यहाँ पर एक सूचना है और निवेदन है कि यदि कोई पाठशाला के कोई शिक्षक और विद्यार्थी सहभागी प्रमाण पत्र लेने के लिए उपस्थित है, मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर शिवाजी राव देसाई जी को कि वे अपने प्रेरणादायी विचारों से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें।
1: नमस्कार। स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल तथा द्वारा संचालित हिंदी भाषा के प्रति समर्पित प्रतिभावान शिक्षक स्वर्गीय श्री सदाशिव शुक्रे इनके पावन स्मृति पर आयोजित पारितोषिक वितरण का जो कार्यक्रम हुआ, इस अवसर पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा अतिथि के रूप में पधारे हुए सब यहाँ इस स्नेहालय के प्राचार्य तथा अध्यापकगण और आप सब लोग यहाँ इस पावन स्मृति के आधार पर शुक्रे जी के समर्पित हिंदी प्रतियोगिता के अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। सबसे पहले मैं इस आयोजक के प्राचार्य अध्यापकगण तथा समिति के आयोजक समितिगण इनको हार्दिक बधाई देते हैं। और जैसे कि हिंदी भाषा सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि हमारे विचारों हमारे भावनाओं को प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी विरासत है, हिंदी हमारी संस्कृतियों को आगे तक लेकर जाने वाली एक पहचान है। हिंदी के माध्यम से ही हम अलग अलग भागों में जा सकते हैं, अलग अलग प्रांतों में जा सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपने विचारों को अनेक लोगों तक जनधन तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी नहीं होती तो शायद हम यहाँ से लेकर दूसरे प्रांत में और वहाँ के लोगों के साथ हम बातचीत नहीं कर पाते। हिंदी के माध्यम से ही हम अपने सभी भावनाओं को विचारों को अपने वहाँ के लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि हिंदी मेरा एक अनुभव मैं बताता हूँ। मैं वैसे रहने वाला महाराष्ट्र का हूँ लेकिन मैंने कर्नाटक के यहाँ मैसूर में सर्विस की, तो वहाँ सर्विस करने के पश्चात मेरे पास अगर हिंदी नहीं होती तो शायद मैं वहाँ के सर्विस या वहाँ के लोगों के पास आदान प्रदान नहीं कर पाता था। तो हिंदी हमारे जीवन का एक अंग ही है। जैसे अभी एक मैडम ने कहा कि हिंदी हमारी मराठी हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मौसी है, तो उसी प्रकार हमें हमारा जीवन यापन करना चाहिए। अभी हम जैसे निबंध लेखन के ओर जाते हैं तो निबंध लिखना मतलब कागज में शब्दों को भरना नहीं है। निबंध के माध्यम से ही जो निबंध लिखने वाला जो छात्र है वो उसके बारे में सोचता है, विचार करता है, तभी उसको अपने कागज पर लिख पाता है। मतलब निबंध से अपने विचारों को एक प्रकार से सजाने का कार्य किया जाता है और निबंध लेखन से ही एक अच्छा लेखक बन सकता है। अच्छा लेखक ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील नागरिक और एक जवाबदार नागरिक भी बन पाता है। तो आप सभी को मैं इस प्रतियोगिता में आप लोगों ने जो हिस्सा लिया है और उसे जो पुरस्कार प्राप्त है उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ मैं विशेष रूप से उन सभी लोगों को विशेष हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया है, हिस्सा लिया है, क्योंकि पुरस्कार प्राप्त करना जो विजेता है वो पुरस्कार प्राप्त कर लेता है लेकिन

0: जो प्रतिभागी उसमें हिस्सा लेता है वो सभी लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाता है, आगे चलता है। तो उन्हीं को भी मेरा आप लोगों को शुभकामनाएं। एक आप छोटी सी आप लोगों को मैं कहानी बताना चाहता हूं। एक कंपनी में जॉन नाम का एक लड़का लकड़ी काटने का काम करता था। वो 5 साल से वही काम करता रहा, लेकिन इस 5वें साल में उसका एक दिन भी, मतलब 5 साल में कभी भी उसकी तनख्वाह बढ़ी नहीं। और नया नया नियुक्त हुआ एक श्याम नाम का लड़का आता है और एक ही साल में उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है। तब जॉन को बहुत ही बुरा लगा और वो अपने कंपनी के मालिक के पास चला जाता है और कहता है कि मैं इतना काम करने के बावजूद भी 5 साल में मेरी एक भी बार भी तनख्वाह बढ़ी नहीं। लेकिन जो अभी अभी आया है श्याम नाम का जो नौकर, उसका तनख्वाह बढ़ाई गई तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो उन्होंने कहा, मालिक ने कहा कि जो श्याम है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी काम करने की क्षमता है लेकिन तुमने उत्पादन क्षमता बढ़ाई नहीं, इतना काम नहीं किया है। तब उसको बहुत बुरा लगा और फिर से वो अपने काम में जुड़ा। उसने बहुत सारे पेड़ काटना शुरू किया और अपनी तरक्की के बारे में सोचने लगा, लेकिन जितना आवश्यक था उतना वो कर नहीं पाया। फिर से वो अपने मालिक के पास चला जाता है जॉन, और फिर से वही दोहराया कि इतने करने के बाद भी मैं इतना काम करने के बाद भी इतना पैसा या इतना लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तब मालिक ने कहा कि तुम श्याम के पास चले जाइए, श्याम ही उसका उत्तर देगा। तो श्याम के पास जाने के बाद बताया कि तुम इतना पेड़ कैसे काट पाते हो, लेकिन मैं नहीं काट पा रहा हूँ, मेरे उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ रही है। तब श्याम ने बताया कि तुम पेड़ काटने के बाद क्या करते हो, आज तक तुमने पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ की धार को तेज किया है, लेकिन मैं हर बार एक पेड़ काटने के बाद रोड में डुबता हूँ और उसके बाद मेरी कुल्हाड़ की धार को तेज करता हूँ। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि आप लोगों ने तो अभ्यास किया गया है, बहुत सारे जानकारी प्राप्त किया है, लेकिन आपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ की तेज को धार को कब तेज किया है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने कुल्हाड़ रूपी धार ज्ञान को तेज कीजिए और अपने जीवन में सफल हो जाइए। जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है सभी को मेरा एक बार और एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही मौलिक ऐसा मार्गदर्शन किया है। मुझे उम्मीद है हमारे बच्चे उस पर खरे उतरेंगे। समय के अभाव के कारण हमने यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली की है। मैं यहाँ पर निवेदन करती हूँ समूह ग की प्रथम विजेता आर्या यादव को कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें।
2: आदरणीय मुख्य अतिथि, माननीय परीक्षकगण, शिक्षकगण और मेरे सभी प्रिय साथियों, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम आर्या किरण यादव है और मैं आप सबको इंग्लिश मीडियम स्कूल की विद्यार्थिनी हूँ। आज आयोजित किए गए इस निबंध स्पर्धा में मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ और इस सम्मान को पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ और साथ ही मुझे अपने विचार आप सबके सामने साझा करने का एक अवसर भी मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं स्नेहा इंग्लिश मीडियम स्कूल का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने इतनी सुंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया। मुझे लगता है कि प्रतियोगिता केवल विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार पाने का माध्यम ही नहीं होती, बल्कि अपने विचारों को शब्द देने और अपनी भाषा को समझने का भी अवसर देती है। अब मेरे विषय के बारे में मैं बात करूँ जो मैंने भारतीय संस्कृति का महत्व ये विषय चुना था। जब हम भारतीय संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने केवल त्यौहार या परंपरा या वेशभूषा नहीं आती, बल्कि मूल्य, विचार, जीवन जीने के तौर तरीके भी आते हैं। भारत अनेक भाषा, धर्म, परंपरा और विविधता वाला देश है और इन सभी विविधताओं से हमें जोड़े रखने वाली भावना है एकता और आपसी सम्मान। और अभी यही सब विचार मैंने अपने निबंध के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है और मैं एक बार फिर से स्नेहालय स्कूल का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद।
1: यहाँ पर यदि धनश्री पेटकर उपस्थित है तो उन्हें भी यहाँ पर बोलने का संधि दी जा रही है।
3: आदरणीय उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे माता पिता एवं सभी उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मेरा नाम धनश्री दीपक पेटकर है। मैं स्वानंद विद्यालय चिंचोली कायदा सत्ता चढ़ी में पढ़ती हूँ। आज यह दिन मेरे लिए बहुत ही आनंद और गर्व का दिन है। स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल अहिल्या नगर के माध्यम से आयोजित जिला स्तरीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2026 में मुझे प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार मेरे लिए एक पुरस्कार नहीं बल्कि मेरे मेहनत को मिली हुई एक सुंदर प्रेरणा है। सबसे पहले मैं स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ।
4: श्रोते हो, आत्ताच आपण स्नेहालय इंग्लिश मीडियम स्कूल अहिल्यानगरच्या वतीनं स्वर्गीय श्री सदाशिव दत्तात्रय शुक्रे यांच्या पावन स्मृतीमध्ये आयोजित केलेल्या अहिल्यानगर जिल्हास्तरीय हिंदी निबंध स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारोहाचा संपादित वृत्तांत आपल्या रेडिओ नगर 90.4 FM वरून ऐकला। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

चिलमन मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना श्रद्धास्पद क्षत्रपाल महाराष्ट्र प्रवर्तक सिंह के चरणों में हम सभी की स्नेही संत वृंद विदुषी महासती वृंद परिशन पर्व की प्रेम पूर्वक बुद्धि पूर्वक और बल पूर्वक चर्चा में सहभागी होने के लिए आए हुए श्रोतागण, जहां भी आप तृप्त हो जाएंगे उसकी अगली चर्चा मैं करूंगा नहीं। प्रेम पूर्वक की भाषा में आप समझ गए तो मैं बुद्धि पूर्वक की भाषा करूंगा नहीं। बुद्धि पूर्वक की भाषा आप समझ गए तो बल पूर्वक की भाषा करूंगा नहीं। अभी आप पर डिपेंड है कि आप कब बॉइल होते हो, थाने उकाली कदी फूटे और थाका माते डिपेंड है। जब तक थाने उकाली फूटे नहीं तब तक मैं भट्टी वो थाका माते डिपेंड है। मैं किसको कहते हैं उत्सव, क्या है उत्सव? उत्सव है देव गति का आयुष्य बंद करने का सूत्र है। दूसरों के खुशी में खुश होना और अपनी खुशी को दूसरे के पास पहुंचाना, इसको त्योहार कहते हैं। त्योहार कभी अकेला व्यक्ति नहीं मना सकता है, त्योहार अकेला परिवार भी नहीं मना सकता है। त्योहार तभी होता है जिसमें सारे शामिल हो जाते हैं, और जिस समय सारे खुशी में झूमते हैं वो चाहे मिथ्यात्वी हो, वो चाहे सम्मित्वी हो, वो चाहे भवी जीव हो चाहे अभवी जीव हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे धर्म को मानने वाला हो चाहे धर्म को नहीं मानने वाला हो, जब खुशी स्प्रेड होती है तो देव गति का ही उस समय बंद होता है। उस समय सारे देव गति के अंश के ही अंदर में प्रोसेस शुरू हो जाती है, और उस समय यदि किसी का आयुष्य बंद हो जाए तो जितनी उसके खुशी की इंटेंसिटी होगी उतने ऊंचे देवलोक का बंद होता है। दुख में नरक गति का बंद होता है, उदासीनता में तिरेंच गति का बंद होता है, और समरसता में मनुष्य गति का बंद होता है, और समर्पण में चारों ही गति के बंद होने के दरवाजे बंद होकर के केवल सिद्ध गति का मार्ग खुलता है। और खुशी में समर्पण हो सकता है, खुशी में जिस समय तुम किसी के चरण छूते हो तो उस समय तुम्हें वरदान ग्रहण करने की क्षमता आती है। मजबूरी में जब तुम किसी के चरण छूते हो, दुख में जिस समय तुम किसी के चरण छूते हो उस समय तुम भिखारी बनते हो, और खुशी में जिस समय तुम चरण छूते हो उस समय तुम भक्त बनते हो, वरदान पाते हो। जो जो भी मैं बोल रहा हूं आगम के प्रमाण मुझे पता है, जीवन के प्रमाण तुमको पता है। तुम स्वयं को याद करके देखो, जिस समय तुमने अपनी सासों के चरण खुशी में छुए
और उस समय जो तुम्हारे सिर पर हाथ आया वो कैसा था, और जिस समय तुमने प्रोटोकॉल के नाते से मजबूरी में चरण छुए उस समय हाथ आया वो कैसा था? दोनों हाथ इक्वल थे क्या? नहीं, खुशी में चरण छुओगे तो वरदान की अनुभूति होगी। ये उत्सव का मूल सूत्र है। तीर्थंकर के जन्म कल्याणक पर, तीर्थंकर के च्यवन कल्याणक पर, तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक पर, तीर्थंकर के केवल ज्ञान कल्याणक पर त्रिजगत उत्सव मनाता है। नारकी के जीव भी उस समय खुशी की अनुभूति करते हैं। देवताओं को भोग प्यारा नहीं लगता उस समय, देवलोक प्यारा नहीं लगता है। उस समय उनको प्यारा लगता है तीर्थंकर के सानिध्य में आना है, उसको उत्सव कहते हैं। ऐसा उत्सव का माहौल तैयार करना यह हर धर्म का, हर संघ का, हर ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर होता है। और जो इस कैरेक्टर को जी नहीं पाए उनका संघ, उनका ऑर्गेनाइजेशन डिवाइन बन ही नहीं पाया। लोगों में दिव्यता फैला ही नहीं पाया। इस्कॉन श्रील प्रभुपाद हरे राम हरे कृष्ण ऐसी धुन लगाई कि जिनको हरे कौन है ना, राम कौन है ना, कृष्ण कौन है, ये भी जिनको पता नहीं था वो भी उनके साथ नाचने लगे, वो भी उनके साथ झूमने लगे। संत ज्ञानेश्वर मावली पूर्णता में पहुंच चुके थे लेकिन पंढरपुर की वारी शुरू करी कि घर से लेकर तो पंढरपुर तक लोग खुशी में झूमते हुए चले जाए, और अभी तक सर्वे हुआ नहीं है। लेकिन जिस दिन सर्वे होगा ना उस दिन तुम्हें पता चलेगा जो जो भी पंढरपुर के बारे में जाते हैं खुशी में झूमते हुए उन्हें साल भर कोई डिप्रेशन का स्पर्श नहीं होता है। लेकिन इस पर कोई सर्वे करेगा नहीं कि इस पर सर्वे कर करके मार्केट में कोई दवाई आ नहीं सकती है, आई भी दवाइयां बंद पड़ जाएंगी। कि सर्वे उसी का करते हैं, आज के सारे सर्वे जो चलते हैं वो इंडस्ट्रीज बेस्ड सर्वे चलते हैं। रामेश्वर आवाज रामेश्वर सर्वे उसी के होते हैं जिसके कारण से कस्टमर बनाए जा सके। इसलिए आज दिन तक आप देख सकते हैं आपके उत्सवों पर कभी सर्वे नहीं हुआ है। गुरुदेव के जन्मोत्सव में इतनी तपस्या हुई और उन तपस्याओं में कहीं कहीं कोलाइटिस चला गया, कहीं कहीं थायराइड चला गया, उस पर सर्वे कोई नहीं करेगा। मुझे वो रेफरेंस याद आ रहा है 1995 का, बंबई में खार में तपस्वी श्री सहज मुनि जी महाराज साहब ने लंबी तपस्या की थी और गिनीज बुक में रिकॉर्ड करने के लिए बंबई वालों ने एप्लीकेशन भेजा था। वहां के ऑफिस से उत्तर आया, हम किसी के भूखे रखने का रिकॉर्ड नहीं बनाते, खाने का रिकॉर्ड बनाते, किसने ज्यादा से ज्यादा खाया उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, उपवास का रिकॉर्ड नहीं है। और आप चेक कर सकते हो, यदि गिनीज बुक में आप मुझे बता दो
ध्यान का रिकॉर्ड हो, तपस्या का रिकॉर्ड हो, क्षमा का रिकॉर्ड हो, संयम का रिकॉर्ड हो, गिनीज बुक में रिकॉर्ड कौन से है? सारे असंयम के रिकॉर्ड है, सारे भोग के रिकॉर्ड है। एक मिनट में कितने किस ले सकते हैं उसका रिकॉर्ड है, लेकिन एक मिनट में कितने दुश्मन को तुम दोस्त बना सकते हो उसका रिकॉर्ड नहीं है। ये उत्सव का गणित है। लोकमान्य तिलक ने इसको महसूस किया कि हिंदू देवता की आराधना तो करते हैं लेकिन उत्सव नहीं मनाते, और उत्सव नहीं बनाते इसलिए हिंदू समाज की शक्ति का जागरण नहीं हो रहा है, और इसलिए उन्होंने गणपति को, गणेश जी को सार्वजनिक बना दिया, उसको पारिवारिक नहीं रखा। और वो गणेश उत्सव राष्ट्रीय आंदोलन का मेन मुद्दा बन गया कि उसके माध्यम से जो शक्ति का जागरण हो गया। उत्सव शक्ति का जागरण तभी होता है जब उत्सव होता है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं आपसे, मैं जो भी बोल रहा हूं उसके आगम प्रमाण मेरे पास है। चलते चलते यदि किन्हीं को बहुत ही खुजली आ रही हो तो मलम लगा देता हूं। अंतराय कर्म का क्षय होता है तब जाकर के खुशी का झरना फूटता है, और अंतराय कर्म आठ कर्मों में आपको सिखाया गया कि मोहनीय कर्म भयंकर है। मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है, लेकिन रियल में बताओ जिस राजा के पास शक्ति नहीं हो वो राजा भिखारी है, और इस राजा को शक्ति देने वाला कोई कर्म है तो अंतराय। अंतराय टूटी उपास में आनंद आ गया, अंतराय टूटी दान देने में आनंद आ गया, अंतराय टूटी दर्शन करने में आनंद आ गया, अंतराय टूटी, अंतराय तोड़ी रोहिणी चोर ने, रोहिणी चोर ने अंतराय तोड़ी। वचन सुनते समय आनंद की अनुभूति नहीं हुई थी, जिस समय तीर्थंकर महावीर का वचन उसने सुना उस समय तो उसको गिल्टी फील हुआ था, लेकिन जिस समय तीर्थंकर के वचन की याद आई और उस वचन के कारण से अभय कुमार के षड्यंत्र से बाहर निकला, उस समय उसके मन में वचन सुनने की और वचन को याद रखने की खुशी आई, और खुशी आई तो रोहिणी चोर साधु बन गया। लेट मी रिपीट, एक वचन सुनने की अनुभूति में खुशी हुई और रोहिणी चोर जिसने सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी साधु बनूंगा, अभय कुमार ने नहीं सोचा था, राजा सैनिक ने नहीं सोचा था, दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि रोहिणी चोर साधु हो सकता है, जिसको बाप ने नियम दिया था, अंतिम समय में जिसने बाप को वचन दिया था जिंदगी में सबको सुनूंगा लेकिन तीर्थंकर महावीर को नहीं सुनूंगा, और अंतिम समय का वचन ब्रेक कर करके जब उसको खुशी हुई तो राजा सैनिक ने पूरी राजगृह नगरी स्तब्ध हो गई। जब राजा सैनिक ने भगवान महावीर से जाकर के पूछा, अभय कुमार ने पूछा कि क्या करे इस रोहिणी का, और तब महावीर ने राजा सैनिक को पूछा
यदि रोहिणी साधु हो गया हो तो तू क्या करेगा? रोहिणी साधु हो गया हो तो क्या करेगा? बोले वंदन करूंगा। और तीर्थंकर महावीर ने कहा, वो देखो सामने बैठा है वो रोहिणी है चोर, और तुम जाकर के सारी संपत्ति जो उसने चुराई थी छूट गई। इतनी लंबी यात्रा इसलिए करनी पड़ी कि तुम्हारे मन में महाराज सब बोल रहे हैं लेकिन अगम प्रमाण गई है खुशी, गणेश उत्सव की खुशी, और उस खुशी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बल दे दिया। ये वंदे मातरम गीत की खुशी, और उस खुशी में लोगों ने गोलियां झेल ली। थाने उपास करता ना पित्त हुए निंदाराम हुए, और उन सशस्त्र क्रांतिकारियों को याद करो जब फांसी के फंदे पर लटके तो किस मस्ती से उन्हें वंदे मातरम बोला, खुशी। और आज पूरी दुनिया असंयम में खुशी मनाती है, इसलिए असंयम बढ़ता जा रहा है। आज पूरी दुनिया हिंसा में उन्माद में आती है, हिंसा में खुश हो जाती है, और कितने हिंसा में खुश हो जाते हैं ये आपको भी पता होगा कि बच्चे मोबाइल पर जो गेम खेलते हैं वो सारे हिंसा के खेल खेलते हैं, और हिंसा के खुशी में कहां का बंद होगा? एक खुशी है कि जिसमें सब खुश हो जाते हैं, और एक खुशी है कि जिसमें अकेला व्यक्ति खुश होता है। जब अकेला व्यक्ति खुश होता है तो कोई हिंसा आनंदी कहते हैं, मूर्छा आनंदी कहते हैं, ये रौद्र ध्यान के भेद है, और रौद्र ध्यान में नरक गति का ही बंद होना है। हिंसा के आनंद को बढ़ावा देना, वासना के आनंद को बढ़ावा देना, और फिर कहना कि इतने बलात्कार क्यों बढ़े, तुमने किसमें खुशी सिखाई लोगों को? हिंसा और सेक्स में वायलेंस, किसको ग्लैमर दे रहे तुम लोग? तो क्या बढ़ेगा? वही बढ़ेगा। और इस समय नितांत आवश्यकता किसी की खुशी मनाने की है तो संयम का उत्सव होना चाहिए, तप का उत्सव होना चाहिए, प्रभु भक्ति का उत्सव होना चाहिए, सेवा का उत्सव होना चाहिए। जिस वाणी को सुनकर के रोहिणी चोर श्रमण बन जाता है वो जिन वाणी का उत्सव होना चाहिए। ये उत्सव है, तुमने इसको रिचुअल बना दिया, अपने परिश्रम परों को प्रोटोकॉल में इतना कस करके बांध दिया कि सारे फूल खुशी के मुरझा गए क्या? बिल्कुल मसल दिए गए। देखो ना तुम्हारे चेहरे, अभी सुन रहे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शोक सभा में बैठे हो ना? अरे जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हारे कल्याण के कर रहा हूं कि तुम्हारी पीड़ा की कर रहा हूं? मेरा वचन सुनकर के तुम्हारे मन में पीड़ा हो रही है कि आनंद की अनुभूति हो रही है? फिर वो चेहरे पर क्यों नहीं आ रही है? क्यों उसको बैरिकेड लगा के रखे है ना? पता नहीं क्या हो गया, हमारी धर्म सभा में खुश होने के पचकान हो गए। जिसको खुश हो गया
कि पाप हो जाए ना, इसलिए तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन जान नाच गाना। वहां खुशी मनाने के लिए वो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार का टिकट निकाल के कंसर्ट को जाते हैं, क्योंकि तुमने धर्म की खुशी बंद ही कर दी। तुम दिवाली की खुशी मनाते हो, तुम होली को खुशी से मनाते हो, तुम अपना बर्थडे खुशी से मनाते हो, हिम्मत करो एक सवाल पूछने का। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर तुम अपने घर में खुशी मनाते हो क्या? अरे देखो जय भीम वालों को, वो अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती में क्या खुशी में सरोवर हो जाते हैं। देखो जय शिवाजी जय भवानी कहने वाले को, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती पर क्या उल्लास मनाते हैं। एक जैनी मुझे बताएं कि कौन से त्योहार पर, कौन से धर्म के त्योहार पर वो खुशी मनाते हैं? जैनी त्योहार पर इन मिन गिन गिन करके तो 3 तो त्योहार तुम्हारे पास। एक भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, पुरुषन पर्व, बाकी तीसरा तो मैं तुमको बता भी नहीं सकता हूं कि निर्वाण कल्याणक या केवल ज्ञान कल्याणक, जो तुम मनाते ही नहीं हो। अरे देवता देव देवलोक से उतर करके धरती पर आकर के जिस पर्व की खुशी मनाते हैं, उस दिन तुम्हारे घर में खुशी नहीं, उस दिन तुम्हारे दुकान में खुशी नहीं। सीरियस चेहरा करने बैठो, सीरियस चेहरा करने खाना परसो। उत्सव होना चाहिए, पुरुषन पर्व का उत्सव होना चाहिए। अरे एग्री विथ मी? यस, चेंज कर सकते हो, माइंड चेंज करो कि कपड़ा चेंज करो? मैं माइंड भी चेंज करूं, कपड़ा भी चेंज करूं? कपड़े चेंज होते तो माइंड चेंज हो जाता है। कौन कौन त्योहार के दिन बासी कपड़ा पहने, हाथ ऊपर करो। करो ना हाथ ऊपर। नया कपड़ा चीजे, कैसे कपड़ा चीजे? पुरुषन पूर्व मुपत्ति किसे चीजे? आसन कैसे चीजे? कपड़ा कैसे चीजे? शो नहीं करना, बिल्कुल शो नहीं करना। कपड़ा में थोड़ा पुरुषन पूर्व, धर्म आप लोग कपड़ा में कोनी रहे? धर्म तो सामायिक में, कपड़ा में थोड़ा है। सकला आकम तेज घोलने पिया, श्रमण ने इंद्रभुति गौतम से पूछा था, ये कपड़े काहे को चेंज कराते हैं?

कपड़े चेंज करेंगे तो ही व्यवस्था चेंज होगी। लोगे लिंग पवोयनम, महावीर ने केवल साधना चेंज नहीं करी, महावीर ने कपड़े भी चेंज कराए। हेलो, तीर्थंकर महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ के कपड़े भी बदला दिए। पुरुषनपुर में कपड़े चेंज होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हेलो, होने चाहिए। अरे होने चाहिए, मैं बोलूं कि तुम बोलोगे? तुमने क्या बोलना चाहिए? करेंगे। उनसे बोला हाँ होना चाहिए, मुझे मैं कपड़ा चेंज करना। कमाल की बात हो गई। बच्चों को त्योहार का पता चलता है, बच्चे त्योहार का वेट क्यों करते? हाँ नया नया कपड़ा मिलने लगा। फ्रेश कपड़े होने चाहिए। कैसे कपड़े होने चाहिए? कपड़ा से बास नहीं आवन चाहिए। एक ठाकुर किस्सा सुनाओगे थाने थोड़े बीच में? उन्होंने मस्त किस्सा है, उन्होंने बढ़िया किस्सा है। दो हजार चौदह का किस्सा है। घोटी गया था, घोटी, और थोड़ा सा मुझे वो पंचकर्म का कराना था। तो डॉक्टर बरंट ने नासिक से एक डॉक्टर को भेजा था कि प्रवीण ऋषि जी घोटी में, तुम एक बार उनको चेक कर लो, उन कार्यक्रम शुरू करो। अब वो जवान लड़का घोटी के स्थानक में आया। अब वो पहचानता नहीं प्रवीण ऋषि को। उठे बैठी थी सगड़ी श्रावक श्राविकाएं थी, सगड़ी मस्त पाई की माला खेल रही थी, कोई बात कर रही थी। वो आया, उसने उनको पूछा प्रवीण ऋषि जी कहाँ है? बोले वो सामने बैठे हैं। बोले जा सकता हूँ क्या? बोले जा सकते, लेकिन पहले मुपत्ति लगा। अब उसको स्थानक में पड़ी हुई मुपत्ति थी जो पता नहीं कितने लोगों ने लगा चुके थे पहले। अब उसको लगा कि प्रोटोकॉल है प्रवीण ऋषि के पास जाने का। वो बेचारा मुपत्ति लगा करके आया। मुझे लगा जैन है, अब वो बात कर रहा है मेरे साथ। लेकिन उस मुपत्ति के कारण से उसको, उसने धीरे से मुझे पूछा इसको उतार सकता हो क्या? मैंने कहा आराम से। हेलो, बच्चों को परेशान पर में कैसी मुपत्ति दोगे? इसी मुपत्ति दे जो तेरे लगावन को मन बार बार हुए, है ना? इसी मुपत्ति मत दे जो हो क्यों लगे कठो चादर चौपट भी कैसे दो। हेलो बोलो जी, नया है ना, हैप्पी न्यू ईयर है। समन्सरिया ने क्या है? हैप्पी न्यू ईयर। संवत्सर यानी साल, संवत्सर यानी साल का लास्ट या फर्स्ट डे। ये शाश्वत न्यू हैप्पी ईयर है। तुम जितने भी न्यू हैप्पी ईयर मनाते हो सारे टेम्परवरी है। हर युग में कोई न्यू हैप्पी ईयर है तो कौन सा है? संवत्सर है। तो पुरुषन पर्व का उत्सव मनाना कि नहीं मनाना? जल्दी बोलो, पक्का कैसे मनाओगे? मार साहब अठा वाला ठेके वाला जो को समय कराला, ठेके वाला की तपस्या कराला, ठेके वाला की माला गिन ले वाला, ठेके वाला का पचकान ले वाला, ये खुशी होगी कि रिचुअल होगा? क्या होगा? रिचुअल। खुशी कब होगी? जरा घर में मनाओ ना, कटे घर में मनाओ ना, दुकान में मनाओ ना, रोड पर मनाओगे? जरा आगम उठा करके तो देखो एक बार कि तीर्थंकर परमात्मा नगर में पधारते थे।

डूबते थे और रास्ते पर उनके आने के खुशी में लोग जमते जमते भी जाते थे, तो जमाने वो राजा सारथी, राजा प्रदेश का सारथी पूछते हैं सेवकों को, कौन सा उत्सव है, किस त्योहार में जा रहे हैं लोग? ये पूछा गया है, क्या इंद्र का उत्सव है, क्या नदी का उत्सव है, क्या यज्ञ का उत्सव है, किसका उत्सव है? ये सारे लोग जा रहे हैं एक तरफ। और तब उसको उत्तर मिलता था कि नहीं, कोई इंद्र का उत्सव नहीं, किसी यक्ष का उत्सव नहीं है, या तो तीर्थंकर महावीर पधारे हैं और उसके खुशी में लोग जा रहे हैं। लोगों को खुशी में जाता हुआ देख करके वो भी चला जाता था जो तीर्थंकर महावीर को नहीं पहचानता था। और थे तो ईसा हो कि थाने आता हुआ देखने आने वाला और मन भी बाजने हो जाए, खुशी रस्ते पर मनाते थे और उनका खुशी से झूमता हुआ महावीर के पास जाना लोगों को मोटिवेट करता था। अयप्पा स्वामी का उत्सव होता है, काले कपड़े पहन करके रहते हैं 49 दिन, 45 डेज, कितने दिन? 45 डेज। और 45 डेज वो जमीन पर सोते हैं। कहां सोते हैं? घर में नहीं सोते, जमीन पर सोते हैं। झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, वासना का खेल नहीं खेलते, कोई व्यसन नहीं करते, कोई अपराध नहीं करते और शुद्ध आहार करते। हैदराबाद सिकंदराबाद की बात आपको बताऊं, लोगों ने बताया कि कई जैनी अयप्पा का उत्सव मनाते हैं, काले कपड़े पहन करके रहते हैं, काला कपड़ा, और पूरा रिचुअल फॉलो करते हैं। अगली जानकारी मिली है कि उस समय में पृथ्वी नगर का अपराध का ग्राफ नीचे गिर जाता है। मैंने आपको काले कपड़े पहनने के लिए तो नहीं कहा, कौन से पहनने के लिए कहा? सफेद, व्हाइट, उजला। उरा में थे, चिंतन में डूब गया। कटे थाने विधान दे तो कि नहीं काला कपड़ा पहनना, तो पिछे थे मारो मुंडो ही कालो कर देता। उत्सव की शुरुआत कपड़ों से होती है, किससे होती है उत्सव की शुरुआत? हाँ, आई नो, मुझे जानकारी थोड़ी थोड़ी, तीर्थ शिष्य के पास जानकारी ज्यादा है, मेरे पास थोड़ी है। बोले ये जितने भी शादी में कपड़े पहन करके जाते हैं ना, ये रेंट पर लाते हैं। मैं तो गड़बड़ फिटबड़ होगी तो उसको पकड़ना, उसने जानकारी थी। हाँ, सच है क्या? अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, वो ठीक है, ठीक। हाँ, तो पीछे कहीं करो, थका ले सफेद कपड़ा रेंट में दे उपलब्ध करा दो। हा? नहीं ना, नहीं उसको कहीं करना उसे तो कह दो, अठे है आयारा बाबू सेठ भी है, अनिल पोखरना भी है, सगा ट्रस्टी है, कर दी ना। हाँ, तेरा ट्रस्टी ने कही बड़ी बात को नहीं कही अनिल भू? हाँ? ट्रस्टी कर सके नहीं कर सके? हाँ कर सके, नहीं करना। क्यों? अच्छा, रेंट पे मत दे, गिफ्ट में दे दे। हेलो हेलो, तुम इसको मजाक में ले रहे होंगे। करण जी वाले गांधी जी आए क्या, जिनके घर में से तपस्या चालू है? जिस दिन मैंने सफेद कपड़ों की बात करी,
और उस दिन मैं यहाँ से जा रहा था, वो भाई मेरे पास है, नाम बताइए ना तुम, हाँ गंगा नदी वो तुम नहीं माना मैंने, मैं नाम पूछ रही महावीर। उसने जाते जाते मुझे कहा कि बोले महाराज साहब मेरी भावना है कि मैं 500 ड्रेस कंसेशन पर दे दूं सबको। अरे जिन शासन है दुशासन नहीं है, जिन शासन से प्यार करने वाले लोग हैं और प्यार करने वाले कभी बोलो आठे बोलो ना उन्हें क्यों बोलो उनको कही कह रहे हो प्यार करने वाले, प्यार करने वाले कभी, प्यार करने वाले कभी ये महाराज डरे मुझे महाराज से प्यार नहीं करने।

देखो पीछे कैसे मस्ती से पुरुष अनुभव करे जा रहे। तो पुरुष इतना बोर के खावता खावता वो बिल्कुल बोरच हो जावे मस्ती से सेवन करना। माइंडसेट चेंज, कपड़े चेंज, खाना चेंज, कुन कुन त्योहार का दिनों में घर रो थोड़ा चेंज नहीं करे। त्योहार के दिन घर चेंज होता ही नहीं होता है, होता है ना। पुरुषन पर्व में भी घर कैसा होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। क्या लगता है आपको, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पक्का ये देखो सामने रखा है और समझो इसको, इसको समझो। ये श्रीवत्स है, क्या है? श्रीवत्स का आकार है और श्रीवत्स में अष्टमंगल है और अष्टमंगल में बीच में सेंटर में दो हाथ है। एक हाथ है देने का, एक हाथ है लेने का। प्रेम दूंगा प्रेम लूंगा, खामिनी खमन तुम्हें, खामिनी खमन तुम्हें। मैंने पहली ट्रेनिंग देने थे कृष्ण जी, खामिनी खमन तुम्हें अष्टमंगल। और नीचे इंद्रभूति गौतम ने केशी श्रमण को दीवी गाथा है। किसको दीवी है? कि मैं विजेता कैसा हुआ? ये जय मंत्र है, ये विजय मंत्र है, ये विजय मंत्र है। एक ही जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दसाहु जिने तानम सौ सत्तु जिना महम। इंद्रभूति गौतम ने दी हुई है, केशी श्रमण को दी हुई है। और केशी श्रमण ने इस गाथा को जब इंद्रभूति गौतम से सुना तो केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम को वंदन करने लगे। बड़े थे, इंद्रभूति गौतम से दीक्षा पर्याय में बड़े थे, ज्येष्ठ थे, लेकिन जब ये गाथा उनको मिली तो उन्होंने सिरसा अभिवंदितता ऐसी गाथा, इस गाथा का पाठ करना, इसका जाप करना, इसका अष्टमंगल उसमें है, श्रीवत्स इसमें है, इसका ध्यान हो जाएगा तुम्हारा। और जैसे इसका ध्यान हो जाएगा तुम चेंज हो जाओगे। बाकी त्योहार तुम्हारे कपड़े को चेंज करते हैं, तुम्हारे खाने को चेंज करते हैं, तुम्हारे कैरेक्टर को चेंज नहीं करते, तुम्हारी सोल को चेंज नहीं करते। पुरुषन पर्व तुम्हारे मन को, वचन को, काया को और आत्मा को चेंज करने के लिए और तुम्हारे रिश्तों को चेंज करने का त्योहार है। रिश्तों के सारे कैरेक्टर को चेंज करने का त्योहार है। इसके घर में मस्ती से स्थापना करें और डेकोरेशन का काम न्यू जनरेशन को सौंप दें कि मस्त डेकोरेशन करें। धर्म आपको यूज नहीं करना, सचित्त का प्रयोग नहीं करना। तो फिर कैसे करेगा? आगे परिश्रम करो, जो करना हो दिन में करना है। जो आगे परिश्रम वापस वैसे आपके कैरेक्टर को चेंज, आपके कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, आपके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, आपके रिलेशन को चेंज करने के लिए। ये केवल खाना और कपड़े चेंज करने का त्योहार नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को चेंज करने वाला है, ये तुम्हारे भाग्य को चेंज करने वाला है, ये तुम्हारे रिश्ते को चेंज करने वाला है, ये तुम्हें समर्थ बनाने वाला त्योहार है, ये भिखारी बनाने वाला त्योहार नहीं है, ये तुम्हें मांगना नहीं सिखाता है, ये तुम्हें समर्थ बनना सिखाता है। इसका उत्सव मनाइए और जिसकी तुम खुशी मनाओगे वो

0: तुम्हारे जिंदगी में बिना बुलाए आते रहेगा। तो अष्टमंगल का ध्यान हो जाएगा। इसको मंगल कहा है अगम में, परमात्मा ने कहा अठविया मंगल अपनाता, आठ प्रकार के मंगल है।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषिजी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आत्ताच आपण ऐकलात।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।